जोजोलपा थौ नेपाल सम्बा चिन्चा सौ पी खुद यन लागा द्वादशी थोरेडियो नेपाल ख आन्यना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार रसवाया भोटेकोशी खुशी बासनली चुलापिनेको नीति दे न्यङ्क या साझेदार संघ संस्था स्थानीय तह नापा मिलेजु या तथ्य अस्थायी आवास दे के गुज्या निहजिया के गु कोच गुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मिगचुङ्गु बैठक थोको छिनाजुगु प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज सुप्रेतिन जानकारी बिहादिगु ख पुननिर्माण ग्वाली याता योकुपी विकास सचेतर संघ संस्था त्यता थप्न छु पालिका के गुली ल्याखे छेन्देका बिगु ख उकिया जानकारी प्राधिकरण याता याके तन इनापियागु कोछिनागु एकला जानकारी बिहादिल बैठक कोचिना कथा ग्वालिमी संस्था तेसा नेपाल सरकार लल हागु भुई तोके यागु मापदण्ड खेचुना छे देके मालिगु कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रेतिया थापु दुसा थतेयाना बैठक लिचो लागु लागा थाथी या लाभग्राही या त छेजया थल मुङके गु याना गुली ल्याके छे देके मागु ख उकिया एकिनिया त स्थानीय तह या त पौछुगु कोचिनागु जानकारी बिहादिल नेपाली कंग्रेस पार्टी झिङ्याको महाधिवेशन कथन या निर्वाचन या नीति सभापति गगन कुमार थापा किशोरी सिंह राठौर व श्यामकृष्ण खड्का उम्मेदवारी लागुदु मिग आकांक्षी तेसङ उम्मेदवारी दर्ता याका दिगु खसा थथियाना वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापति मिसास पुष्पा भूषाल अञ्चको उम्मेदवारी दर्ता याका दिगु दु उपसभापति खे खुल्ला थासन डाक्टर चन्द्र भण्डारी देवराज चालिसे सुरेन्द्र राज पाण्डे मधु आचार्य डाक्टर महेन्द्र रिचाल दीपक गिरी धनराज गुरुङ गोविन्द भट्टराई व डाक्टर चन्द्रमोहन यादव उम्मेदवारी लागुदु अथेना समावेशी उपसभापति जीवन परियार विनोद चौधरी फर्मुल्लाह मनसुर सीता गुरुङ रञ्जित कर्णय उम्मेदवारी लागुदुसा खुल्ला महामन्त्री पदे बद्री पौडेल गुरुराज घिमिरे उदय शमशेर राणा अमर सिंह पुन नैन सिंह महर शंकर तिवारी डाक्टर सुनिल शर्मा व डाक्टर सन्तोष उपाध्याय पिनेगु उम्मेदवारी लागुदु महामन्त्री मिसाया थासन डाक्टर डिला संग्रौला डिना उपाध्याय व रिता खनालिया उम्मेदवारी लागुदु सभापति सोमा वरिष्ठ उपसभापति व मिसा उपसभापति छमा छमा याना खुल्ला उपसभापति गुमा समावेशी उपसभापति यामा खुल्ला महामन्त्री के च्यामा व मिसा महामन्त्री के सोमास्या उम्मेदवारी लागुदु महाधिवेशन कथा थौया बन्द सत्र याता गगन कुमार थापा क घना दिगु ज्याछुदु पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साला राजमार्ग पुननिर्माण याबले उच्च खुशी बाया सतह अध्ययन या सुरक्षित थासे पूर्वाधार देके गु याना कानूनी सुधार निजाके मागुधया दिगुदु प्रतिनिधि सभा कथया हिमालय जलवायु उपाय प्रभाव जलवायु न्याय व भोटेकोशी त्रिशुली विपद नापा संसदीय विशेष समिति हिगो चोङ्गु बैठके मन्त्री लम्साला खुशी बा व विपद लिचो लागु लागा पूर्वाधार विकास नापा लिचो लाइगु लिचो लागु फया चोपिन जनता नीति सुरक्षित व मर्यादित आवास दिके गुलिता सरकार थ्या बिया चुनागु धया दिल जलपाई हो पाया प्रभाव भोटेकोशी त्रिशुली विपद नापाया सलस मन्त्री लम्साला रसुवा गढी या व्यापारिक सहरिया कथा विकास याना चिन्ह पाया व्यापार अञ्चसेला के गु मु सिमानाका कथन तव्याकेता गुरु योजना देखा चुनागु जानकारी बिया दिल दासा बैठके नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ जलाखला राष्ट्र भारत व चीन स्वास्थ्य सेवा कनेक्टिभिटी या लाग्या ग्वालियाता सहमति यागो जानकारी बिहादिसे हरित निर्माण या त थ्याबी मागु ध्यादिल बैठके सांसद पिसन जलवायु कूटनीति या त लिचो लाइगु कथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चे न्योज्याना जलवायु उपाय हुने नेपाल फयाचोने मागु हाठ्याम हो यागु पाके विश्व ध्यान कोषले मागुली बब्यादिल समिति सभापति गणेश पराजुले विपस लिचो लापी मनोतेता राज्य उमेगु ग्वाली दुधैगु अनुमति बी मागुलिन बब्यादिल न्याय परिषद उच्च अदालत या पेमा न्यायाधीश या त सर्वोच्च अदालत नियुक्ति नीति सिफारिस आगुदु मिगचुङ्गु न्याय परिषद बैठक सर्वोच्च अदालत नियुक्ति नीति सिफारिस जुया दिपे न्यायाधीश पिङ्के उच्च अदालत पोखरा मुख्य न्यायाधीश डाक्टर रत्न बहादुर बाक्सन उच्च अदालत पाटन चन्द्र बहादुर सारू उच्च अदालत पाटन हिटौडा इजलास न्यायाधीश जनक पाण्डे व उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंज न्यायाधीश गोकर्ण डागी पिदु न्याय परिषद प्रवक्ता रामप्यारी सुनवार या कथा
परिषद मेघ या चोङ्गु बैठक थोको सिनाया गुख मोनिया इले यात्रु तेता अपुके गुनीति वे वने ता व्यवस्थित देखेता नलिस्वा निसिहे पूर्णिमा तक नेपाल न्यङ्क रुट परमिट च्याकी गुजुगुदु यातायात व्यवस्था विभागे मिग चुङ्गु नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ नापा सपुतैपिनीको बैठक मोहनी न्यङ्क दे न्यङ्क रुट परमिट च्याकीको कोचिगु ख बैठक थोए असोज 23 गते निसि मोहनिया नेते अग्रिम टिकट बुकिङ च्याकेको कोचिना नापा यानागु नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद चिटौला जानकारी ब्यादिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा संचार सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेल दथी आर्थिक दन 2083-84 नीति कार्य सम्पादन सम्झौता फोङको गुदु थोएल सत्या संचार सचिव पौडेल नापा मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख वो मन्त्रालय मातहत्य थिति निकाय प्रमुख पिसन कार्य सम्पादन सम्झौता याना दिल थोएल सत्या संचार सचिव पौडेल नापा नेपाल दूर संचार प्राधिकरण अध्यक्ष अर्जुन खिमिरे नेपाल टेलिकम या प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल सुरक्षण मुद्रा या मुद्रण केन्द्र या कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना राष्ट्रिय समाचार समिति या महाप्रबन्धक सन्दीप राय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था या कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्नेत वर्खापत्र संस्थान या महाप्रबन्धक हिक्मत बहादुर रावल विज्ञापन बोर्ड या अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ कार्य सम्पादन नापा या पौसन लाची तयादी गुख मिग मन्त्रालय गोसागोको कार्य सम्पादन सम्झौता लाची वा कालबिल ज्याचो संसार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा कार्य सम्पादन सम्झौता यता औपचारिकता जक मतसे सफुदुगु निकाय तेस निथ कार्य सम्पादन व दक्षिया आजुकागु महत्वपूर्ण नपुखे दस्तावेज या कथन कया मागुली सुझाव ब्यादिल नेपाल ओ चीन दतिया निगुदे दतिया परामर्श संयन्त्र या सोकको बैठक मिग नेपाल ओ रुस दतिया निगुदे दतिया परामर्श संयन्त्र या सोकको बैठक थौ ये चुने तेङ्गुदु नेपाल ओ रुस कूटनीतिक स्वापु पलिस्ता जुगु हे त हनासङ इले जुइतासङ बैठक नेपाली प्रतिनिधि मण्डलीय नेतृत्व परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई रुसी प्रतिनिधि मण्डलीय नेतृत्व नेपाल भ्रमणे दिमा रुसी उप विदेश मन्त्री आन्द्रई रुन्डेको याना दि नेपाल ओ रुस तथि नियमित परामर्श व निगुदे दथिया क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विचार काल विलयाग आज सन् 1995 स परामर्श नापाया प्रोटोकल हाचे तयादी गुख संयन्त्र नापाङ बैठक सन् 2007 मस्को व निकगु बैठक सन् 2018 अप्रिल 17 ये जुगुख थुगुसी या मोहनी या सैत कार्तिक 4 गते बुधबार सुतेसिया जिता इजे निकुगु मिनेटे बालागु नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समिति धागुदु मोहनी या दशमी खुनु निच्छि सिनन्टी फैगु जोसाना साहित्य सिनन्टीगु नीति थो सायद बालागु समिति अध्यक्ष सह प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम भट्टराई जानकारी ब्यादिगु ख थुकुसी असोज 25 गते आइतबार निशी नवरात्र उलेजिया जुइसा नवरात्र नपाङ्गु दि नलिसोनीगु याई कटस्थापना दि नलिसोनी खुनु सुथसिया नलिसोनीगु नितिन सुथसिया झिन्छता इजे पी नेगु मिनेटे बान लागु सायद लागु थागुदु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल व अस्ट्रेलियाली संसदीय सभामुख मिल्टन डिग दथि नाप्लाई जाजुगुदु अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आइपियू या सचिव नेसोको गुमा सभापतिकाता तान्जेनिया या अरू सामा ठेङ्का डिमा सभामुख अर्याल व अस्ट्रेलियाली सभामुख डिग दथि मिग नाप्लाई जाजुगु नेपाल अस्ट्रेलिया दतिया पासाया स्वापु संसदीय सहकार्य नापाया थिति विशेष विचार कार्यविल जुगु सभामुख अर्याल सभामुख अर्याल या सचिवालय जानकारी बिगुख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा रसवाया भोटेकोशी खुसी सङ वङ्गु भदौ 10 गते वङ्गु खुसी बासन लिचो लापी नुवाकोट या थिति पालिका स्थानीय बासी नपा सल ब्याका वेकपिनीगु हाठ्या या विशेष सूचना कया दिगुख नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 या प्रतिनिधि सभा सदस्य नापा चुया सोनादीमा संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा खुसी बासन लिचो लापी चला खला पी नापा सल ब्याका दिशे खुसी बासन जुगु क्षति राहत वितरण या अवस्था पुनस्थापना पुननिर्माण या ज्या थे मा कथा पूर्वाधार देखेको विशेष जानकारी कया दिगुख
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ राज्य गोप्य सूचना दुरूपयोग ज्ञापिता कानूनी दायराके हेगु ध्यादिगुदु। गृहमन्त्री गुरुङ गृह मन्त्रालय मातहतिया निकाय सम्भालाको विवेचना चोङ्गु सुन पदाधिकारी वा कर्मचारी थगु पदीय हैसियत लुमङका गोप्य व संवेदनशील सूचना अनधिकृत कथा मनुवा निकायसँग जेकीको प्रविधि थप्न ताइलनिसे सोयाचना गुली सामाजिक सञ्जाल पाखे थो जानकारी बियागु ध्यादिगुदु। गृहमन्त्री गुरुङ राज्य लल हागु गोपनीयता दति सिका सिकन देव संगठन दति विश्वासघाती याइपिन हेमा जुसान कानूनी दायराके हया तोतिगु थयादिगुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री स्वस्मित पोखरेल उच्च शिक्षा भिङ्केगु नीति नीतिगत संरचनागत सुधार या याक्नन हिजाकेगु ध्यादिगुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिमाराम हिग गोसागुगु उच्च स्तरीय सम्वाद ज्यासोयाता ककाना दिसे मन्त्री पोखरेल नुगु एन देकेवा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ज्यायाता नाप्नाप्ना हिजाकीगु ध्वाथुका दिलस वेक्ल ये या कोठा दुने चुना नीति देखिबले स्थानीय आवश्यकता छुटे जुइगुले जनप्रतिनिधि व सपुतैपी नापा तपिङ कखलावला याना धरातलीय यथार्थ थुइका थो ज्याजो निजाकीगु थयादिल। सरकार किसान तेता परिचय पत्र लल ह्याटियङ्गुदु। कृषि संचार तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र पाके किसान सूचीकरण द्वितीयपी किसान तेता यक्न परिचय पत्र यहाँसँग लल ह्यागु ज्याकुदु। आदेशिया भुख थुगुसिया भौतिक शास्त्र पाके नोबेल शेर्पा बल्सेम जन्म जुमा वैज्ञानिक फ्रान्सिस हालजेन यता लल ह्याटियङ्गुदु। खगोलीय मूल्य उच्च ऊर्जा न्युट्रिनो खोज व आइस्क्युब न्युट्रिनो वेधशाला खगोलीय वेधशाला थगु योगदान ठेङ्का दिमा हाल जेनिया तथुगुसिया भौतिक शास्त्र पाकिया नोबेल शेर्पा लला तेङ्गु ख रोयल स्विडिस एकाडेमी अफ साइन्सेस मिग स्टकहोम शेर्पा घोषणा यागु ख चेनिद दुमा हालजेन अमेरिका या विस्किन्स मेडिसन विश्वविद्यालय नापा आबद्ध जुया दिशा उच्च ऊर्जा न्युट्रिनो ब्रह्माण्ड यो कोहे ऊर्जाशील स्रोतसँग वैको सूक्ष्म कण ख थुकिया अनुसन्धान हो आइस्क्युब न्युट्रिनो वेधशाला साथ्याङ्का दिगु योगदान थुजियाको कण या खगोलीय मूल मसिका व अध्ययन महत्व जाइको लिधंसा देखगु दु थुगुसिया नोबेल शिर्पा या ढेवा छगु करोड निगु लाख स्विडिस क्रोनर दुसा थो ढेवा अथे झिन्गु लाख अमेरिकी डलर बराबर ख। मौसमी जानकारी थौ लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लगाया छुन थासे व मधेस नापा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई लगाया मोह थासे मला नापा लाप्सा तोया फे व पुङ नापाङ वा वैगु धुकुमादु। लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी व तराई लगाया बागमती गण्डकी व कर्णाली प्रदेश या पहाडी लगाया छगुनिगु थासे तस्क वा वैगु मौसम विज्ञान विभाग या धापु दुसा वङ्गु नि पे घौले ये सोनि गया क्वाज नि खुगु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस तथी चोन धासा थौ नि ङ्यागु निसे नि हेगु डिग्री सेल्सियस तथि चोनिगु धुकुमा दु थौ सुथे या सोनि गले सुथे स्या ङ्या ता इ जुया ङेसँग मिनेटे खने दुगु निभा सनिलाई ङ्या ता इजे पी गुगु मिनेटे बी। रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा सुभा।

दि रेडियो नेपालीन आङ छिरिङ लामा शेर्पाने शेरिकेला साङ्ग्युर सेनोनाङ सिङजिन रामचन्द्र पौडेल्ला थारू छोक्पी पल्जोर लोङितोङ गेचुग्या निताङ गेचुग्या सुम्की लोखोर प्रतिवेदन सिगेमुवाए सिङजिन ल्याकुङ शीतल निवासला आरिङकोटिक्याउ ल्यारिमला छोक्पी कार्यवाहक छोक्सो सुबोध सिंह थारूकी ती प्रतिवेदन सिगेपु सेनुवाए दुग्राङ क्याने दलित छोक्पी पल्जोर लोङितोङ गेचुग्या निताङ गेचुग्या सुम्की लोखोर प्रतिवेदन संघ छोक्पी छोक्सो देवराज विश्वकर्माकी सिङजिन पौडेल्ला चिगेपु सेनुवाए ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्से लोनपु डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी स्विजरल्याण्ड कि फेडरल अफिस अफ कम्युनिकेसन कि सिचु टोतोनपो इजाबेल लोइस तङक्यान थुक्थेत क्यानाङवाए थुक्थेतला यम्बु तङ स्विजरल्याण्ड कि ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्से कि सखुल्ला चिग्रिल गेछा जब डिजिटल सुनक्योप डिजिटल सार्वभौमिकता ताङ लक्ष्यकी यर्गेकी कोर्ला टोङ्गु चोङ्गु सेनुवाए लोनपो तिमिल सिनाकी यम्बी डिजिटल गिरुवात्यामा खक्षनपो चिउ सुङिन दलेन लक्ष्यकी सखुल्ला डोसुङ लाक्बा ताङ सिग्रिलकी खोरुक झोलमु डोइङ्गलुप सुङसुङ ती कप्ला लोयसकी चिलो नितोङ निसुदिनकी जुन लाला जेनेबाला कोटिकी तुप एआई ग्लोबल समिट नितोङ गेचुग्या दिनला यम्बी छक्सुकी तन्दोक्ला देनसाङ सु नङ्गु सेनुवाए सिग्याल लोनपो सिसिर खनालकी यम्बु ताङ प्रशान्त सकुलकी टापु ग्यालखप तुई नाम गिरोकी कलेलो तुप्सुङवाए पिजिला कोडिक्याउ प्रि कोप लिडर्स इभेन्टकी थोरिम स्तरकी लिडर्स प्लेनरीला सुङलप्नगिन लोनपो खनालकी खाङरी ताङ ग्याम्सो तुई पर्ला डेलो हो तुप्सुङसुङ लोनपो खनालकी खाङरी सकुल्ला हो तुप ग्यालखप तिवला नाम गिरोत्यामा क्योन गिर्पु फोकु सुङिन जलवायु न्याय तेन्तेन्की गौ सुङसुङ सिसी नाम गिरोत्यामा उङ्गुप क्योन त्यामा सुङक्योप कितुप्ला खाङरी सकुलकी ग्यालखप ताङ टापु गेलखप दुई पर्ला डिग्ने लागा कि सुङसुङ नेपाली काङ्ग्रेसकी सोक्चेन नाङला आरिङ्गीमा जिवालासँग बन्द सत्र सुनवाए महाधिवेशनकी कुसप तुई प्रस्ताव नाछोक तङ प्रतिवेदन कोर्ला टोङ्गु डुपा क्याने आरिङ रङ थाक्चोत कितुप टरी क्यानो उतुप सेनुवाए बन्द सत्रलाई छोक्सो गगन कुमार थापाकी राष्ट्रिय पुनर्जागरण तङ यार्गे कोरकी सबसित प्रस्ताव छोक्सो सोनपा विश्वप्रकाश शर्माकी तन्दी कोर नाछोकी प्रतिवेदन महामन्त्री गुरुराज घिमिरेकी सोखी छोक्पी कोर्की प्रतिवेदन त मूल नेर्पा उमेश श्रेष्ठकी पल्जोर कोर्की प्रतिवेदन कोर्ला टोङ्गुकी होतुप सेनुवाए बन्द सत्र ने प्रस्ताव तङ प्रतिवेदन थाक्चो चुङसीमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन गठित सम्वाद थोप्ला ओदेम कितुप सेनुवाए गठित सम्वितन्दकला छोक्सोकी कोसाला गगन कुमार थापा तङ श्याम कृष्ण खड्कीकी उम्मेद्वारी बिन्दुप सेनुवाए ओदेमकी तन्दोकला छोक्सो तङ कोसा नासोकला गठित तुई उम्मेद्वारी तर्ता क्यान्सिन्दुप सेनुवाए सिसी सलाम बोट लुकु ल्यारिम टोप्ने जुनरङ गोजुतुप सेनुवाए राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तेजिन टडिक प्राधिकरण कि बोटेकोसी सतोक्तेमा क्योन्फोकु खाङबी मितुई तन्दोकला अस्थायी खाङबा जब प्रिमी छकपा तुईतेमा प्रस्ताव कितुपला सुवाए हारिङ लेन्ची खेपेलकी प्राधिकरण कि रसुवा कि सतोक्तेमा क्योन्फोकु नुवाकोट तङ दादिङ जोङखी स्थानीय तहकी खाङबी मितिओला सहरी यार्ग्या तेजिन भवन निर्माण विभागले स्वीकृत मापदण्ड नङसिन खाङबा जबला नासमोतुप छकपातिओला प्रस्ताव जोकुला सुइन छकपा तुई प्रस्तावला खोङतुई जब खाङबी थो खाङबा जब दासा तङ स्थानीय तहकी मिङ सलु जोगो सेनुवाए दुग्राङ क्याने अस्थायी खाङबा जबला गोजु तुप तुसो तङ डुपाकी तुप तुसोसँग लाकी छर्सिला जोगो सेनुवाए न्याय परिषदकी ठिमकाङ चेन्पोकी ठिम्पोनला मिराजीकी मिङ सिफारिस क्यानुवाए दाङदेउ न्याय परिषदकी छकदुकी ठिमखाङ छेन्पोकी ठिम्पोन मिराजीला ठिमखाङ छेन्पोकी ठिम्पोनला नियुक्तिकी तन्दोकला सिफारिस क्याउ सेनुवाए परिषदकी सेतुप नङसिन ठिमखाङ छेन्पो पोखराकी ठिम्पोन चो डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द तेजिन उच्च अदालतकी ठिम्पोन त्यो चन्द्रबहादुर सारु जनक पाण्डे तङ गोकर्ण डाङ्गीकी मिङ सिफारिस क्याउ सेनुवाए सशस्त्र कोर्सुङ मक्मीकी एआइजी बंशीराज दहलकी कोर्ला सुङकी लेन्त्यो पाङ्ला तेन्दुप कोर्ला न्याम्सिप कितुप लाका गोचुनवाए सुङकी खोङला कोसाने तेन्तुङ्गुप निमा सुङकी नाङला न्याम्सिप क्याने प्रतिवेदन सिगेकोला याम्बा एआइजी अञ्जनी कुमार पोखरेलकी गोठितला न्याम्सिप छोकपा जो सेनुवाए नाङसित लोनखाङकी सुङसेपा तेजिन छाक्रोक टुङ्गिक आनन्द काफ्लेकी सुङकी सुङक्योप कोर्की लेन्त्यो पाङ्ला खेफेल क्याने कोसाकी ल्यागेनकी खप्तेला लाका क्याउ खम्चु वासीमा न्याम्सिप गोचु खेन्तोक नाङसुङ सशस्त्र कोर्सुङ मक्मिकी ल्याकुङकी सेतुप नङसिन दाहाल्ला गोमी ठिम्पोन चोलेन्द्र प्रसाद जवारालाई कोर्सुङ मक्मिकी जिम्बु गोमु अनुमति माला क्याने काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान ल्याकुङलाई गल्ने ठेउ क्योनसङ होतुप सेनुवाए
नेपाल रेड क्रस सोसाइटी की भोटे कोशी स्व तोक्तेमा क्यून फुकू खांग बी मिति वाला पलजोर टैंगा रोक्रम कितुप गनवाए रेड क्रस तेजिन रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जम्बुलिंग महासंघ की टुंगशे जगन चापागाई की गलुप दुनठाकला स्व तोक्तेमा क्यून फुकू दासा त्यो जी नगुप्रीम वाला ती घोषणा क्या नगुपिन नेपाल रेड क्रस की अम्पुम तेजिन पेजी लोनखांग की क्यून फुकू सखुल्ला लकलेन क्यान ओतुप समुन्नति ल्यारिम तेमा ती टैंगा तेरूप थाकचुत क्यान वाए दसैँ कि तुसोला मितिओला जोलो मुजोब्ला चाङ ट्राफिक टडी कितुप्ला घटस्थापना ने जुन छेवा च्याङासे गेलखप नङ्गी दासा तेरिला रुट पर्मिट खुला कितुप गनवाए डिमडुल टडिक सकवाला आरिङ देऊ एम्बी कोर्सुङ मग्मी ट्राफिक कोर्सुङ मग्मी तङ डिमडुल सङमेन तुई सङदुकी दसैँ तुसो नङला रुट पर्मिट खुला कितुप थाक्चत क्याउ सेनवाए सङदुकी असोस लाकी गते निसु सुम्ने जुन दसैँ कि तन्दोकला टिकट बुकिङ बेतुप थाक्चत क्यानवाए सिसी लामकी नेताङला खक्षण पोचिने लामला मिखुरुप गाडी तिओला खक्षण पोच्याप सेनवाए दसैँ कि तुसोला मितियो बङ्गी फाड सुर्की तुप्तपकी डिमडुल टडिक टिकट टडिक लामकी नेताङ तङ मितुई सुङ्ग्योपकी नेताङला खाक्सन पुच्याप्साङ डिमडुल टडिक सोपी सेतुबिन मितिओला टिकट नेतुप्ला जोलमो उङसी तङ सुङ्ग्योपो तुप नेताङला लेप्गो दासल स्याक लेफिसिने डेलो तुप सकपा तुई पर्ला सिगडिल गोसुसाङ सोपी सेनवाए दुग्राङ्ग्याने नेपाल राष्ट्र बैङ्की दिलोकी दसैँ तुसोला खक्षण पोचि बैङ्क तङ वित्तीय सकपातेवाला एटिएम मेसिन तुई त्यामाराङ ट्याङ्गा सही चिकी नोट तेर्गोला निर्देशन बिनवाए नेपाल राष्ट्र बैङ्की सुङसेपा गुरूप्रसाद पौडेलकी बोटेकोसी सतोक्तेमा मि टोङबा तङ मिमाङ रोक्ला बङ्गी क्योन फोकु सुङ्गिन तुसेन गेरपुतेवाला खक्षण पोचि राष्ट्र बैङ्क तङ वाणिज्य बैङ्क तेमा नोट सम्बात्यो नेतु टडी क्याउ सुङसुङ सुङसेपा पौडेलकी दि असोस लाकी गते ताङमोने जुन राष्ट्र बैङ्की थापा राष्ट्र बैङ्की प्रादेशिक ल्याखुङ तङ वाणिज्य बैङ्क तेमा नोट सम्बन्धी तेरुप्लाका कि हो तुप ख्यान्तोक नाङसुङ पोखरा महानगरपालिका कि दासा नाछोकला कास्की जोङकी कोर्सुङ मक्मिकी जिन्क्योङ क्याउ स्विप अपरेसन कि रिम्बाला मिरा च्याङला जिम्बु सेनुवाए तन्दा तुसेन गिरपुतियो उङिन ओतुप कप्ला जिकोरला वाउ मितिओला गाडी थोकुला तङ सखाङला टिन रोप्ला काङथेप हुर्ता क्याने दुपाते रूप मितिओला कोर्सुङ मक्मिकी जिम्बु सेनुवाए ती रिम्बाला अफलाइन पटाओ तङ इन ड्राइभ कि गाडी तोङ्गुप मिरा गे तङ जिप तोङ्गुप मिरा चिक्ला जिम्बु इन जिम्बु मितिओला ङ्याम्सिप कि तुप्ला तङ टिम तोङ्गुप्ला ओडा कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ बैदाम तङ्गुप जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याकुङ कास्की कि सेतुबिन टोसम कोर्सुङ मक्मिकी जिकोरला उङ्गुप मितिओला दुक्पा बिन्दुफा कोसिङ सिपकी कोर्सुङ मक्मी ल्याकुङला लेन तङ्गुपला मिमाङतिओला सुवाए ग्यालखापकी दासा नाछोकला आरिङ्गीमा काङ छरगेकु ताङ जपासाङ छेर्मुसेक छरगेकु नाम कोर्की ख्यापा तुई सेनवाए जपेम्बी छेर्मुने जुन नाम सेङ्गु नाम कोर्की ख्यापा रोजन लामिसानेकी सेतुबिन आरिङ बागमती गण्डकी लुम्बिनी तङ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी दासा नाछोकला तङ दासा चिक्सोङी चेउला छरबङ्गी गेकिन ओतुप सेनवाए तन्दा काठमाडौँ उपत्यकाकी दासा नाछोकला थोक ताङ डुगेकु तेजिन शेर ताङ छरगेकिन ओतुप सेनवाए हुम्ला जोङखाला दाङगमुने जुन छरो ताङ खागेम्ने मिमाङतिओ कालेला स्वरूप सेनवाए जोङखी खाङरी सकुला खागेकिन ओतुप ताङ याम्बा दासला छरगेकिन ओतुप सेनवाए हुम्ला जोङखी नामखा ताङ सिमकोटला खागेकिन ओतुप सेनवा सिसी आदान चुली ताङ ताजा कोटला छरगेकिन ओतुप सेनवाए तन्दती दासा तेउला मितिओ फारसुर्की तुप्ला कलेर चुङुप ताङ लाम्तिओ नागल ओतुप लोतोक तेवाला क्योन फोङ ओतुप सेनवाए तुग्राङ क्याने दासा लालाला स्वतोक ताङ टोकपा गेम ओतुप ताङ चाङबुतिओला छुग्यान ओतुप तपकी जोङखी कोर्सुङ मक्मिकी मिमाङतिओला च्याकपुकी ओला सुवाए गुल्मीकी दुर्कोट युल सकपा वडा आङ्गकी ऋषिराम भण्डारी करेन्ट गेम्ने नासागनवाए सिमल चौरला ओतुप खोङकी सिङ्खलाराङ ओतुप लोककी तार तेमा करेन्ट गेम्ने खोङ नासागलुप जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङकी सेतुबिन रेडियो नेपाल नेसेरी केला साङ्गुर डुप्सुङ थुचिसे

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासे सुनलजा मैथिली भाषामा समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डाक्टर विक्रम तिमिल शिलासंग स्विट्जरलैंड के फेडरल ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस के वरिष्ठ नीति सलाहकार इसावे लुइस शिष्टाचार भेटवार्ता कलने छो। अई भेटवाट के क्रम में नेपाल स्विट्जरलैंड बीच सूचना तथा संचार प्रविधि के क्षेत्र में सहकार्य आ सहयोग के विषय में विचार विमर्श भेले छो। संचार मंत्री डाक्टर तिमिल सिन्हा विभिन्न क्षेत्र में स्विट्जरलैंड सरकार संग के सहकार्य तथा प्राप्त सहयोग प्रति धन्यवाद व्यक्त करैत आवे वाला दिन में थप सहकार्य आ सहयोग विस्तार करबाक लेल नेपाल इच्छुक रहल बतौलन। भेट में डिजिटल सुरक्षा, सार्वभौमिकता, डिजिटल अखंडता तथा सूचना प्रविधि के विकास से नेपाल प्राप्त कर सकबाक लाभ के विषय में विचार विमर्श भेल छल। एहि क्रम में संचार मंत्री डाक्टर तिमिल सिन्हा नेपाल के डिजिटल रूपांतरण के प्राथमिकता में राखि काज कर रहल चर्च करैत ओहि क्षेत्र में पर्याप्त लगानी आना वातावरण सहज बनित गेल बतौलन। वरिष्ठ नीति सलाहकार लुइस सन 2027 जून 21 आ 22 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजना होवे वाला AI ग्लोबल समिट 2027 में नेपाल के सहभागिता के लेल निमंत्रणा देने छलथि। ओ सम्मेलन में नेपाल के तथा संबंधित सरकार वाला के प्राथमिकता के संबंध में जानकारी लेलन। भेट में फ्रीडम ऑनलाइन कोलिशन ने नेपाल संभावित सहभागिता तथा पर्यवेक्षक के रूप में नेपाल की भूमिका विषय में विचार विमर्श भेल छल। अखन 42 सदस्य राष्ट्र रहल ई गठबंधन सब इंटरनेट स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, गोपनीयता तथा ऑनलाइन अधिकार की प्रवर्धन में सहकार्य करैत आयल छ। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सार्वजनिक संचार संस्था सब के संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना की चुस्त दुरुस्त व्यावसायिक आ परिणामुखी बनाबा में आवश्यक रहल बतौलने छ। राष्ट्रीय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था आ गोरखा पत्र संगठन संस्था के संगठन तथा व्यवस्थापन पर्यवेक्षण के प्रगति के जानकारी लेत ओ संस्था के कार्य संपादन आ कार्य बोझक आधार पर आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधन व्यवस्थापन करबाक बतौलने छ। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा आब अनावश्यक रूप में बहुतो महाशाखा शाखा प्रशासनिक तह थपि कऽ संरचना के जटिल नहि बनेबाक चाही बतौलनि। काम मुदा दक्ष जनशक्ति से प्रभावकारी सेवा प्रवाह के संगठन संरचना निर्धारण कयल जेबाक चाही पर ओ जोर देलनि। ओ सार्वजनिक संचार संस्था सब के मुख्य जिम्मेवारी समाचार सूचना तथा कार्यक्रम संपा उत्पादन आ प्रसारण भेला से वह हिसाबे जनशक्ति तथा दरबंदी निर्धारण करबाक चाही बतौलनि। व्यावसायिक आ उत्कृष्ट समाचार कक्ष संचालन के लेल आवश्यक जनशक्ति तथा अखन कार्यरत जनशक्ति के अवस्था से अध्ययन का काज के प्रकृति आ कार्य बोझ के आधार पर व्यवस्था कयल जेबाक चाही बतौलनि। सार्वजनिक संचार संस्था सब की संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत संस्थागत संरचना, दरबंदी, जनशक्ति आवश्यकता, काज के विभाजन, कार्य विवरण, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, कार्यालय तथा शाखा के आवश्यकता के विषय में अध्ययन भ रहल अछि। संचार मंत्रालय से भ रहल सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर संस्था सब की भावी संरचना आ जनशक्ति व्यवस्थापन के व्यवस्थित करत सेवा प्रवाह के थप प्रभावकारी आ व्यावसायिक बनेबाक लक्ष्य राखल गेल छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता नेतृत्व में टेली मेडिसिन सेवा के थप प्रभावकारी व्यवस्थित आ टिकाऊ बनेबाक विषय पर विचार विमर्श कलने छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय में भेल विचार विमर्श में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा सहित विभाग के निमित्त महानिर्देशक पाटन अस्पताल आ वीर अस्पताल के प्रतिनिधि तथा उपचारात्मक सेवा महाशाखा के प्रमुख लगात के सहभागिता रहल छल। विचार विमर्श में टेलीमेडिसिन सेवा के टिकाऊ रूप में संचालन करबाक लेल आवश्यक बजट, जनशक्ति तथा संस्थागत व्यवस्थापन के विषय में विचार विमर्श भेल छल। सेवा संचालन के लेल आवश्यक जनशक्ति के अलगे व्यवस्थापन करत सेवा निरंतर आ प्रभावकारी बनेबाक विषय में सेहो विचार विमर्श कयल गेल मंत्री मेहता के सचिवालय जनौलक अछि। अहिना टेलीमेडिसिन मार्फत प्रदान होवय वाला सेवा के रिकॉर्ड तथा अभिलेख व्यवस्थित करबाक, रोगी के विवरण सुरक्षित रखबाक आ परामर्श संबंधी जानकारी के व्यवस्थित अवलेखीकरण करबाक विषय में विचार विमर्श भेल छल। बैठक में टेलीमेडिसिन सेवा विस्तार संगे भविष्य में आबि सकबाक संभावित समस्या तथा चुनौती के पहचान क अय के समाधानक लेल पूर्व तैयारी करबाक पर सेहो जोर देल गेल छल। मंत्री मेहता टेलीमेडिसिन सेवा के प्राविधिक आधारित सेवा मात्र नहि भ
नागरिक के स्वास्थ्य सेवा में पहुंच विस्तार करवाक सन प्रभावकारी माध्यमक रूप में विकास करवाक चाहिए बतबैत सेवा के विश्वसनीयता आ गुणस्तर कायम करवाक लेल आवश्यक व्यवस्था मिलावा जोर देने छलथि। रौतहट जिला अदालत सँ विभिन्न मुद्दा में दोषी ठहरब फरार भेल 37 प्रतिवादी के प्रहरी पकड़ लगे छे। अदालत के फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान अंतर्गत जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा माथात के कार्यालय से खटल गेल प्रहरी के टोली फरार प्रतिवादी के नियंत्रण में ले लगे छे। पकड़ल गेल प्रतिवादी सब से 7 वर्ष 2 महीना 37 दिन कैद सजाए आ 2,73,777 जरिमाना वसूल होब बाकी रहल प्रहरी जनौलक छे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रवक्ता तथा प्रहरी नाव परीक्षक बसंत गौतम के हिसाबे पकड़ल गेल ऊपर जालसाजी मारपीट तथा अंगभंग विद्युतीय कारोबार ऐन नागरिकता कृति जान मारने उद्योग अभद्र व्यवहार लेन देन बिगो बाल शोषण जबरदस्ती करनी तथा जबरदस्ती करनी उद्योग आ चेक अनादर लगात के मुद्दा सब रहल अछि। प्रहरी 10 दिन विशेष अभियान अंतर्गत पकड़ने 37 प्रतिवादी के कसूर हिसाबे आवश्यक कार्रवाई कै तथा जरिमाना वसूली के लिए रौतहट जिला अदालत गौर में बुझौने प्रवक्ता गौतम के जानकारी दिलेन। जिला प्रहरी कार्यालय परसा पावन तिहार के लक्षित करत विशेष सुरक्षा योजना आई से लागू कैलक आव वाला दशई दीपावली नेपाल संबत तथा छठ के शांतिपूर्ण सुरक्षित मर्यादित एवं उल्लासमय बनावा सुरक्षा योजना लागू कैल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्र बहादुर मल की जानकारी दिलेन। पावन तिहार के अवसर पर शांति सुरक्षा के नीक है तय के कारण से विभिन्न अपराधी घटना के निस्तेज बनावा प्रहरी सुरक्षा योजना कड़ाई के संग लागू करत से जनौल छे। प्रहरी सेवा सवारी चालक के मादक पदार्थ सेवन का सवारी नहीं चलावा जुआ ताश नहीं खेला तथा आतिशबाजी नहीं करवाक लेल सेहो समाज के सब तह आतपता संग अपील कैलक छे। जिला प्रहरी कार्यालय सब नागरिक के सुरक्षित हिसाब से पावन त्योहार मनावा तथा आपराधिक घटना गतिविधि में संलग्न के संबंध में समय में खबर का सुरक्षित समाज निर्माण करवाक सजिया जिम्मेवारी आ दायित्व निर्वाह करवाक लेल अनुरोध कैलक छे। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए 51,17,02,000 के अनुमानित बजट सार्वजनिक कैलक छे। विश्वविद्यालय के सीनेट सभा में प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजट प्रस्ताव हिसाबी पूंजीगत दिस 21,08,95,000 आ संचालन दिस 30,08,07,000 विनियोजन कैल गेल छे। विश्वविद्यालय ऐन 2074 के व्यवस्था बमोजिम ई बजट तथा कार्यक्रम स्वीकृति के लेल सभा में पेश कैल गेल छे। विश्वविद्यालय प्राविधिक व्यवसायिक तथा सामायिक शैक्षिक कार्यक्रम के तीव्रता दैत गत आर्थिक वर्ष 2082-83 के प्रगति विवरण सेहो सार्वजनिक कैलक छे। अखन विश्वविद्यालय माथात आंगिक आ संबंधन प्राप्त कैंपस सब में 5,927 विद्यार्थी अध्ययनरत रहल अछि। विद्यालय स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह के 20 से अधिक शैक्षिक कार्यक्रम सब संचालन करताल में बीतल समय BIT, MCA, BLLB, LLM लगायत 9 नया विषय सब कक्षा के कक्षा सब सेहो संचालन में आनि चुकल अछि। आब मौसम समाचार। काठमांडू उपत्यका सहित देश के विभिन्न क्षेत्र में आई अनहर बिहार संगे मेघ गर्जन छनका आ वर्षा भ रहल छ। मौसमविद के हिसाबे मानसून बहरवा क्रम संगे पश्चिमी वायु के प्रभाव सेहो रहला से आव वाला 3 दिन धरि मौसम स्थिर नहीं रहत से जानकारी दिलेन। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसमविद रोजन लामिछाने के हिसाबे देश के विभिन्न पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्र में मेघ गर्जन छनका अनहर बिहार आ पाथर सहित मध्यम वर्षा के संभावना है। मौसमविद लामिछाने के हिसाबे आय के तुलना में बृहस्पति दिन की सुधार हायत बावजूद पहाड़ी तराई के विभिन्न स्थान में वर्षा के संभावना कायम रहत। शुक्र दिन धरि विभिन्न स्थान में बदली संगे मेघ गर्जन ठनका आ वर्षा के गतिविधि दोहरा सकबाक संभावना है। हुनक हिसाबे वर्षा लंबा समय निरंतर हायत आ छोट समय में बेसी वर्षा हेबाक आ किछ समय पश्चात रुकक के प्रकृति के रहत। शनि दिन से मौसम में क्रमिक सुधार होबाक अनुमान कायल गेल छ। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के मंगल दिन राष्ट्रीय टोली से भावुक विदाई वो लेलने छ। ब्यूनस आयर्स स्थित मोनुमेंटल स्टेडियम में 85,000 समर्थक समक्ष बेनील के 3-0 से पराजित करत वो अपन 21 वर्षीय लंबा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल यात्रा के अंत्य कलने छ।
39 वर्षीय मेसी अपन कीर्तिमानी के 208 अंतर्राष्ट्रीय खेल में 126 गोल करत विदाई के अविस्मरणीय बनौले ओ निकोलस ओटामेंडी के पहिल गोल के लिए सहयोग कलन त निको फाज दोसर गोल के लिए मेसी खेल के 17 मिनट में पेनाल्टी मार्फत गोल कने छले। खेल के परिणाम से मेसी की विदाई मुख्य आकर्षण बनल छल। द लास्ट टैंगो नाम दिल गेल कार्यक्रम में हुनकर समर्थक सबके प्रेम आ सम्मान ओ ग्रहण कलन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।